0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
0: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
3: Good morning. It's past 6 o'clock, and it's the day that everybody dreads. It is a Monday morning. Doing Monday morning things, Monday morning blues. Ko hatane ka ye hai bilkul durust. ठिकाना, इट इज कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। रहिए ऑल द वे टिल 10 o'clock, इसमें आप ही का फायदा है, बिकॉज बहुत कुछ है ऑन द शो, ऑल द अनाप शनाप दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इस सब के बारे में गप्पे शप्पे मारेंगे, एंड सम बिग ह्यूज प्राइजेस फॉर यू टू गेट योर हैंड्स ऑन। कीप इट लॉक टू बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनी एशिया नेटवर्क।

0: heartthrobs out there calling you. यहाँ पर आकर बैठ जाइए, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है. I know it's a Monday.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: देखो, I know that the weekend is over. I know that this is the most stressful day of the week. के मतलब सुबह उठ के काम पे जाने में जितनी मौत मंडे को आती है ना, of course पूरे हफ्ते नहीं आती. But here's a thought to kind of put some balm onto that घाव, and that is that सोचो अगर वीकडे नहीं होता, वाई डू यू अप्रिशिएट द वीकेंड सो मच? या वाई डू वी कीप वेटिंग फॉर फ्राइडे इवनिंग? वाई डू वी लव द वीकेंड सो मच? बिकॉज देर इज अ वीकडे, राइट? अगर मंडे मॉर्निंग नहीं होता तो फिर वैल्यू नहीं होती ना वीकेंड की. या बाबा सिड, शुरू करो आज का पिटारा. कॉकटेल 2 द फिल्म दैट हैज ब्रोकन लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स. से जब तलक कमिंग अप इन जस्ट वाइल, कौन से रिकॉर्ड्स बताऊंगा आपको कुछ देर में. इन केस देयर इज अ सॉन्ग दैट रियली गेट्स यू अप एंड रनिंग ऑन दिस मंडे मॉर्निंग, लेट मी नो द सॉन्ग दैट इज नंबर वन ऑन योर प्लेलिस्ट. शेयर इट विद एवरीबॉडी. शेयरिंग इज केयरिंग. 800-1062, दैट्स माय नंबर, 800-1062. पर दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ द शो व्हिच इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आवर.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2
2: The Beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
4: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: या दुनिया में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट अगर किसी फील्ड में है वो है द वेदर फोरकास्टिंग फील्ड। 3 दिन तक रेन इज फोरकास्ट, कैन यू बिलीव इट? स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, डोंट गेट ए होप टू हाई फॉर टुडे। आज मंडे नहीं लेकिन ट्यूसडे से 3 दिन तक बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग राइट नाउ। नाइस एंड सनी एंड वार्म स्टार्ट टू दिस मंडे मॉर्निंग। Highs of 36, lows of 31 degrees, humidity of 57%.
6: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं वापस आऊंगा, नहीं मैं वापस आ गया हूँ, इट्स अ मंडे मॉर्निंग, बट मैं वापस आऊंगा जो फिल्म रिलीज हुई उसका ये गाना मस्कारा.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: You know, I think, and tell me if you agree with me, कि जो movie reviewers का जो game है, especially on YouTube, वो मतलब next level पहुंच चुका है यार. मतलब quality is amazing. You know, the way in which they talk, the way in which they convey their ideas, काफी मेहनत करते हैं script पर भी ऐसा लगता है. लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है? Because there are so many of them, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है. It is very difficult to kind of decide what film to go and watch or not. And at the end of the day, आपको खुद ही टिकट खरीद के फैसला करना पड़ता है. मैं वापस आऊँगा. If there is one consensus that you can make, it is that अगर आप एक बहुत ही heart wrenching emotional performance देखना चाहते हैं, especially if you're a नसीरुद्दीन शाह fan, एक तो यहाँ पे you know हिंदी सिनेमा के one of the best actors of all time वो है इसके अंदर, and then also हिंदी सिनेमा के big hope for the future, Vedang Rana is also in this one, and kind of you know the puppet master is Imtiaz Ali. Always rely on him for at least a you know basic level of performances and basic level of movie. Toh hai definitely yaar, Rahman ka music hai, so sounds like a treat that I haven't watched yet. If you have, give me a call, let me know your review on 800-1062. Coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid.
1: Big 106.2.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कुड़ नशे से चढ़ गए।
1: यार कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, चेक करना पड़ता है यार कहीं। आई होप मैं होश में तो हूँ। सम वन सच गेम हैपेंड इन द फीफा वर्ल्ड कप।
2: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: दिस इज द रीजन व्हाई फुटबॉल हैज सो मेनी फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग इवेंट इन द होल वाइड वर्ल्ड। फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। 5 बजे आज सुबह का गेम था, न्यूजीलैंड वर्सेस इजिप्ट। व्हेन आई केम इन दिस मॉर्निंग इट वाज हाफ टाइम, न्यूजीलैंड वर लीडिंग 1-0 एंड आई एम लाइक वाओ इजिप्ट विद मो साला एंड यू नो अ वंडरफुल टीम एटसेट्रा। क्या हो गया उनके सेकेंड हाफ में? गेस व्हाट द फाइनल स्कोर इज। फुल टाइम के बाद इजिप्ट मेड अ धांसू कमबैक एंड 3-1 गेम को फिनिश किया है, इंक्लूडिंग अ गोल बाय द वन एंड ओनली मो साला। सो या 3-1 Egypt winning that game against New Zealand in Group G. इससे पहले कल रात Uruguay versus Cape Verde. Now that Cabo Verde कहिए, Cape Verde कहिए, लेकिन there are no words to describe that goalkeeper and how viral he's become. He had somewhat 15-20,000 followers before the World Cup. Now it's crossed 5.6 million. And इस game के बाद और भी ज़्यादा cross हो गए होंगे because they held Uruguay to a 2-2 draw. And then kal Belgium versus Iran was a 0-0 draw as well. Lots of draws happening but creating lots of history and drama in the process. Spain beat Saudi Arabia 4-0. Yeah, aur aaj sare desi log ikhatta hone wale hain at all the various screening locations across the town. I can already feel it because Argentina taking on Austria, very good game at 9 p.m. tonight. Argentina v Austria. And then there's going to be a France game as well 1 baje. So हाँ, 9 से लेकर आज 3 काफी ड्रामा होने वाला है एट द फीफा वर्ल्ड कप। क्या लग रहा है? इफ यू आर अ बिग फुटबॉल फैन गिव मी अ कॉल 800-1062 पर, दैट्स द नंबर। हु डू थिंक इज द फेवरेट सो फार? अगर अभी तक देखा जाए, ऑल द टीम्स हैव प्लेड मोस्टली 2-2 गेम्स ईच, मोस्टली ऑन एन एवरेज। हु डू थिंक इज द फ्रंट रनर टू विन अपार्ट फ्रॉम अर्जेंटीना? वो तो आप दिल से बात कर रहे होंगे। फिर Lots coming up on the show, including India A ne ek dhansu jeet kal hasil ki against Sri Lanka A in the finals. So details coming up. Keep it locked. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: Bollywood.
1: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: मॉर्निंग साहब, इसका 13 मिनट प्रॉमिस टू बी वेरी ड्रामेटिक वीक वेदर वाइज, बिकॉज कल से लेकर 3 दिन तक का बारिश के चांसेस हैं। दैट्स व्हाट द एनसीएमएस सेड। रेन इज प्रेडिक्टेड फॉर 3 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूजडे दिस वीक। इट्स फिलहाल कोई आसार आपको नजर नहीं आएंगे बारिश के। 32 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस मंडे मॉर्निंग, ह्यूमिडिटी एट जस्ट 53%, हाईज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्रीज।
8: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। Visit Al Ras, Middle East ka number one auto AC spare parts dealer.
0: The Big Mix, weekdays 10 a.m. to 2 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: The Big Breakfast, brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
4: It's game on with Big Ticket.
5: A guaranteed 25 million dirham prize.
4: 5 winners of 1 million dirhams each.
5: Plus weekly draws.
4: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Well, let's take a look at the capital. सबसे पहले अबू धाबी में आपको no major issues out there. बस हल्का बुल्का traffic heading towards University of Abu Dhabi and then a bit of congestion Sector 13 Khalifa City के आसपास on E20. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. The usual suspects heading southbound going towards Dubai from Sharjah 311 E11 पर. Both arteries you'll find 5 to 7 minutes का delay heading south. There's also Beirut Street right outside Medina Mall. As usual S112 पे आपको traffic मिलेगा east and west करता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया इन शारजा पे. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा के आसपास भी देयर इज कंजेशन बिल्डिंग अप. 611 हेडिंग साउथ ऑन एमिरेट्स रोड गोइंग टुवर्ड्स अल अबीर भी आपको मिलेगी 4 से 5 मिनट की देर.
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: What's up everyone?
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: यू नो वॉट, सैलरी डे ऑब्वियसली अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी हेक्टिक भी। कैश निकालो, बिल्स और एक्सपेंसेस के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए एक्सचेंज सेंटर के चक्कर लगाओ।
1: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E& Money यूज करो।
0: क्या सैलरी के लिए?
1: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E& Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
0: जैसे क्या?
1: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
0: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
1: बिल्कुल, E& Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E& Money के साथ फिक्र छोड़ो। Terms and conditions apply.
2: Insurers.ie. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: मॉर्निंग हार्डवर्कर, 12 मिनट ऑन दिस मंडे मॉर्निंग। वेदर इज गोइंग टू टर्न वेरी ड्रामेटिक स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग। अगले 3 दिन तक, ट्यूसडे टू थर्सडे, देयर इज चांस ऑफ रेन एंड इनफैक्ट फॉग, मिस्ट एंड टेंपरेचर इज गोइंग टू ड्रॉप बाय थर्सडे एंड विंड्स आर गोइंग टू स्ट्रेंथन, सीज आर गोइंग टू टर्न मॉडरेट टू रफ। इसके कोई आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। जस्ट 2 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवा बह रही है। There is a humidity at 49%. It's 33 degrees Celsius right now. Nice and sunny start to this Monday. Highs of 36, lows of 32 degrees Celsius.
3: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: 8:32 on the clock on this Monday ki subah, and while you and I were deciding ki concert naya time pass kiya jaye over the weekend, there's somebody who was getting very, very serious.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: I've got Sameer with me on the phone line. Sameer Sheikh, good morning. How are you doing?
2: Morning bro, I'm doing good. How are you?
1: जब मैंने पूछा समीर से कि भाई वीकेंड पे क्या है, कुछ ऐसा टाइम पास किया है जो मस्त बता सकते हो सबको, समीर टर्न सीरियस. समीर क्या किया बताओ यार सबको वीकेंड पे?
2: मैं तो रेस्टोरेंट में बिजी था भाई, नो वीकेंड.
1: रेस्टोरेंट खोला नया वाला है समीर भाई, कांग्रेचुलेशंस.
2: टेल
1: मी एवरीथिंग, आई वांट टू नो एवरीथिंग. व्हाट इज द क्विजीन, वेयर इज इट लोकेटेड, नाम क्या है, टेल मी.
2: It's located behind Alkiada metro station. Mm-hmm. The cuisine is South Indian, Bangalorean food.
1: With an M or with a B?
2: M.
1: यार ये क्या मैंगलोर की जनता का, explain this funda to me यार. Every second person in Mangalore wants to open a restaurant. मतलब क्या hospitality आपके खून में है क्या, क्या सीन क्या है?
2: मतलब
1: आवाज आवाज कट गई आपकी, फिर से बताओ.
2: खाना होता है जो fish item जो होता है,
1: हाँ.
2: वो थोड़ा सा special होता है, तो
1: बंदे को लगता है कि उनके यहाँ का खाना सबसे स्पेशल होता है. लेकिन आई थिंक यू नो व्हाट, कि आप लोग में एक अलग ही एक जो है ना कि मेहमान नवाजी का एक अलग अलग एक कल्चर है इन मैंगलोर. यू काइंड ऑफ एंजॉय नॉट जस्ट ईटिंग फूड लाइक वी डू, बट ऑल्सो शेयरिंग इट विद अदर पीपल. आई थिंक दैट्स व्हाट द एंटायर फंडा इज. यार आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू रेस्टोरेंट ओनर्स, यू नो, एंड आस्क देम द सेम क्वेश्चन. एंड द अदर थिंग इज कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल पे आपका जो ध्यान रहता है ना, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैज अ रेस्टोरेंट एंड ही सेड कि हिज दादाजी स्टार्टेड दिस होल थिंग एंड ही स्टिल टू दिस डे गोज एंड इंस्पेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग हिमसेल्फ. सो उनका जो पर्सनल टच इट काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स ऑन टू द डिशेज ऑन यू नो एवरी इवनिंग एंड इट्स जस्ट अ वेरी मैजिकल कनेक्शन विद फूड, राइट समीर? सो व्हाट इज द स्पेशलिटी मैंगलोरियन फूड में, एक स्पेशल डिश क्या है आपके आपके रेस्टोरेंट?
2: हम लोग जो स्पेशल जो ज्यादा मूव होता है वो है घी रोस्ट.
1: घी रोस्ट
2: इन अ सेंस इट्स अ सी फूड.
1: हां,
2: सो यू गेट इट इन अ स्क्विड, यू गेट इट इन श्रिम्प्स एंड यू हैव दिस किंगफिश घी रोस्ट.
1: वाओ,
2: गुड कॉम्बिनेशन इज नीर डोसा, वी कॉल इट नीर डोसा.
1: नीर पानी, या नीर पानी, पानी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डोसा वो होता है, सॉफ्ट वाला एकदम. बट आई हर्ड ऑफ घी रोस्ट डोसा, बट घी रोस्ट सी फूड ट्राई करने के लिए आना पड़ेगा आपके रेस्टोरेंट पे. तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल पूछा था, 36th एनिवर्सरी ऑफ ए बॉलीवुड मूवी, जिस मूवी में इस गाने का ओरिजिनल था. बताओ समीर भाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
2: दिल मूवी.
1: दिल इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यू जस्ट वांट टू ओपन मूवी टिकट्स. तो रेस्टोरेंट शुरू किया आपने, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का काम है, जब स्ट्रेस से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो गो एंड एंजॉय द मूवी ऑफ योर चॉइस एट अ टाइम ऑफ योर चूजिंग. ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट बिग 106.2 फॉर दिस न्यू वेंचर. टेक केयर, दैट इज समीर, हमारे आज के विनर हैं. एंड अगर आप भी जीतना चाहते हैं दो ओपन मूवी टिकट्स, यू गॉट फ्लेक्स अ बिट ऑफ बॉलीवुड मसल. रोज सुबह हम खेलते हैं द बिग बॉलीवुड क्विज़.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Ankur Desai. Preliminary results in the Colombian presidential election appear to show the right-wing candidate Abelardo de Espria on track to narrowly win. He's leading the tight race ahead of his left-wing rival Ivan Cepeda. The prospect of a long-term peace deal between the US and Iran is once again in doubt after reports in Iranian state media said the delegation from Tehran walked out of talks in Switzerland. The Israeli prime minister says the IDF will stay in southern Lebanon for as long as is necessary to protect northern Israel from Hezbollah. Fighting is reported to have greatly diminished since late on Saturday, but Benjamin Netanyahu has insisted that nothing will alter his commitment to at-risk communities. A Bolivian Air Force jet brought in to assist police and soldiers clearing roads blocked by anti-government protesters has crashed, killing all six on board. The plane had been conducting aerial patrols over the highway, where bulldozers were being used to clear the roads. Britain says it will invest more than $60 million on boosting its domestic production of critical minerals. The move comes as the government seeks to reduce reliance on global supply chains and strengthens its economic resilience. And the American golfer Wyndham Clark has won the US Open tournament for a second time, triumphing over American Sam Burns by one shot at Shinnecock Hills Golf Club in New York State. Clark had been hoping to win over fans again following an incident last year where he lost his temper at the Champions.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant color, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
3: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
0: Forget coffee, chai. He has got your morning kick. UAE's number one way to rise and shine. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
4: इमेजिन यू यशस्वी जायसवाल, यू हैव स्कोर्ड 2 सेंचुरीज इन 3 गेम्स, लेकिन फिर भी आपको अगली सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है. ओ माय, आई मीन हाउ डिफ्लेटिंग वुड दैट बी? व्हाट डू यू से टू समबडी लाइक यशस्वी जायसवाल, हु इज सपोज्ड टू बी द फ्यूचर ऑफ द टीम? मोर ऑन दैट कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, राइट हियर ऑन द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे. इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को बड़ी जोर से स्टेकेशन पे जाना है, और क्यों ना हो यार, इट्स आर फेवरेट थिंग टू डू हियर. एंड ऑफ कोर्स जब आपको मुफ्त में कोई मौका दे रहा है तो इस मौके पे मारो चौका. एंड देन व्हाट्सएप इज फ्री ना, तो 40-50 लोग थोक के भाव में भेजे जा रहे हैं. भेजो भाई, बिल्कुल मुफ्त है. 0543091062, दैट्स आवर व्हाट्सएप नंबर, 0543091062 पर. ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस. BSS स्पेस देकर अपना नाम, व्हाट्सएप इट टू मी राइट नाउ एंड यू कुड बी प्लेइंग द वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट एंड विनिंग एन अमेजिंग स्टेकेशन एट द रिसॉर्ट्स अलमेरिड इन रसलखेमा.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze, and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888 पर कॉल करें. विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
6: नहीं, बर्फ तो थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन बारिश जरूर पड़ने वाली है. दैट्स व्हाट द एनसीएम इज प्रेडिक्टिंग फॉर द नेक्स्ट 3 days. ट्यूसडे टू थर्सडे इज गोना बी रेनी. इनफैक्ट टेम्परेचर इज गोना बी डिपिंग गोइंग टुवर्ड्स थर्सडे हियर इन द यूएई. Right now, it's a nice and sunny start to this Monday morning. 34 degrees Celsius right now. Humidity at 47%. Winds na ke barabar, 3 kilometers per hour ki raftar se. And highs of 36 right now. Lows of 32 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts. The number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets. Spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
2: Right, it's that moment that everybody's been waiting for. It is time for the big summer surprises, and the two contestants are ready with us on the phone line. Sabse pehle, let's say a good morning to Neeraj. Kya hal chaal hai?
3: Hello, hello. All good. How are you doing?
2: Very good, yeah. I mean, yeah, Neeraj, if you think that he's sounding a bit robotic, he's because he works at an AI company, and you're a CA at an AI company. What are the chances that your company ka AI will gutko your job?
3: Quite a lot. Nowadays.
2: Quite a lot nowadays. Yeah. Chalo, par shubh shubh bolta hun, fingers crossed. We've got something, some light at the end of the tunnel. Ek chance for you to win a staycation, all right, coming up. I've got Ashi, who's going to be playing against you. Ashi, good morning.
4: Hi, good morning, Sid. How are you?
2: Aapka koi AI VS koi connection? Ya sirf pyar se log aapko aai kehte hain ya kuch aisa kuch hai? Nahin, nothing.
4: नहीं, मेरा छोटा सा नाम है आशी।
2: हाँ, उसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है विद एआई, है ना?
4: नहीं नहीं।
2: चलो ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी नीरज वर्सेस आशी दिस मॉर्निंग, ऑलराइट?
4: Okay.
2: मैं आपको रूल्स समझाता हूँ. सो दिस इज गोना बी द वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट. ध्यान से सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स मैं आपको दूंगा ओवर 30 सेकंड्स, ठीक है? यू हैव 30 सेकंड्स इन विच टू ट्राई एंड आंसर एज मेनी एज यू कैन. जैसे ही आपको पता चल गया कि वर्ड क्या है, आपको चिल्लाना है. क्या चिल्लाना है?
3: बिग नेम.
4: बिग एंड नेम.
2: या बिग एंड Big and your name. So, Neeraj, if you think you know the answer, shout Big Neeraj. And Ashi, agar aapko lagta hai ki aapko jawab pata hai, kya chillaoge aap?
4: Big Ashi.
2: Yeah, Big Ashi. All right. So, any doubts?
3: No.
4: No.
2: ठीक है, अगर आपने सही जवाब दिया तो एक पॉइंट आपका, अगर आपने गलत जवाब दिया तो एक पॉइंट आपके कंटेस्टेंट का. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? लेट्स सी, इट्स अ बेस्ट ऑफ थ्री. आई एम गोना लाइक मैक्सिमम थ्री मैं आपको पूछने वाला हूँ. लेट्स सी इफ यू डू बेटर देन द पर्सन हु इज प्लेइंग इन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट यू. योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ फॉर दिस वंडरफुल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमेरिड. आर यू गाइस रेडी?
3: या.
2: टाइम शुरू कर दूं मैं आपका?
3: या, लेट्स गो.
2: ऑलराइट. एस डैश एन S C dash E E N. S dash N space S C dash.
4: Big Ashi.
2: Ashi, boliye.
4: Sunscreen.
2: Absolutely correct. One nil in favor of Ashi. Next one. S U dash G L dash S S dash S.
3: Big Neeraj.
2: Big Neeraj. Sunglasses. Correct. And here's the tiebreaker. Okay. समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, लेकिन दिस इज द टाई ब्रेकर. आर यू गाइस रेडी? बी डैश सी एच.
3: बिग नीरज.
2: बिग नीरज.
3: बीच.
2: एब्सोल्युटली करेक्ट नीरज, आपने बाजी मार ली. बीच इज द करेक्ट आंसर. आशी, इट वॉज अ फोटो फिनिश, बट यू हैव टू से कांग्रेचुलेशंस टू नीरज यार.
4: Congratulations,
2: नीरज. नीरज, आपका नाम ड्रॉ के अंदर चला गया है. यू विल बी यू नो इन कंटेंशन टू विन दिस वंडरफुल स्टेकेशन एट रिक्सॉस अलमेरिड. हाउ मच डज इट मीन टू यू? हाउ बैडली डू यू नीड दिस स्टेकेशन? टेल मी.
3: Yeah, my daughter is coming for a vacation. She's studying in Europe. So it will be great if we go together with her.
2: Wonderful, yeah. That reason enough. I think एक और brownie point आपको मिल गया उसके अंदर. I'm going to be you know doing some सिफारिश also. नहीं, मजाक करो, कोई सिफारिश नहीं चलती इस गेम के अंदर. But congratulations, आपका नाम draw के अंदर चला गया है.
3: और
2: keep your fingers, toes and toenails. In fact, ask your daughter also to keep her fingers crossed wherever in Europe she is right now. Plus on the spot, Neeraj, we won't allow you to go back empty-handed. आपने जीत लिया है 2 Vox tickets and an F&B voucher as well. Congratulations.
3: Thank you so very much. Thank you.
2: Enjoy yourself, Neeraj, and thanks so much for taking part in our contest. You are the first draw entrant, the first winner of the big summer surprises. So enjoy.
3: Thank you. I appreciate it. Thank you so very much.
2: That is Neeraj, and bhai, that's how much fun it is, right? The big summer surprises. Aap bhi apni entries, you got to get your entries in, and the next time you play, you can be playing on Mansi show in the evening. So just type out BSS space dekar apna naam. Just keep messaging, keep WhatsApping all through the day. BSS for big summer surprises. BSS space apna naam. Aapko WhatsApp karna hai. The number is 054-309-1062. That's 0543091062. Keep WhatsApping those messages. And the big summer surprise being made possible by our presenting sponsors, Skechers, title sponsors Papa John's, hospitality partner Rixos Almeri, Russell Khema. Also, don't forget that tomorrow, once again, I'm going to be playing this game at the same time, jahan par one more of you are going to get shortlisted in the lucky draw and also win tickets and an F&B voucher.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
4: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
5: Today's weather update: sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances, and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
6: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
0: Listen to her every day.
7: Mugambo! खुश हुआ।
8: मुझे यकीन था कि मैं इकलौती हो ही नहीं सकती हूँ। कई ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो सिर्फ क्रिंज के लिए कंटेंट देखते हैं, एंड उसमें भी अपना अलग मजा है यार। एंड ऐसी ही ये मूवी थी। आई स्टिल लव दैट डायलॉग। आई थिंक ये रिश्तेदारों पे एप्लीकेबल होता है कि आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। राइट, आई हैव गॉट शंकर। हाय, गुड इवनिंग।
9: हेलो, गुड इवनिंग मासी।
8: मुझे लग रहा है कि आप मेरे बिछड़े हुए भाई हैं। आपका एल्गोरिथम भी उतना ही खराब होगा जितना मेरा है, क्योंकि आपने ये मूवी देखी है। देखते हो ना क्रिंज कंटेंट? एंजॉय करते हुए
9: वेरी क्रिंज कंटेंट, इंक्लूडिंग दोज कैट वाला मी।
8: भाई मैं तो आलू प्याज की शादियां, गुलाब जामुन और रसगुल्ले पे चीट कर दिया। आई एम टेलिंग यू, यू माय लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। वी वॉच द सेम कंटेंट, आई लव इट। आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, एंड वी आर आल्सो फैन ऑफ भाईजान, तो वो जो भी करते हैं इज आर बिजनेस, आई एम फॉर श्योर।
9: भाईजान के लिए करना पड़ेगा,
8: भाईजान के लिए तो बस क्रिंज भी मंजूर है।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
10: ए जल्दी हटा, तेरा खटारा चल हटा। अरे जल्दी हटा यार सुन।
0: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
11: Nothing major out of the ordinary to report on the roads out there. Aaj काफी well behaved traffic for a Monday morning. There is the usual Alnada interchange 1E11 पे heading south going towards Dera from Sharjah. आपको मिलेगी 7-9 minute की देर। No escaping 311 का traffic as you get out of city center Zaya. Again heading south all the way till Mohesna. आपको slow moving traffic मिलने वाला है। Then there's industrial area 6 in Sharjah.

0: ईस्ट एंड वेस्ट करता हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है S112 पर, एंड देन देयर इज 611 नस्मा सेंट्रल पार्क से अल अबीर की तरफ जाता हुआ आपको मिलेगा ट्रैफिक. देयर इज ऑल्सो बिट ऑफ ट्रैफिक एट Ribad Street D83 पर एज यू एंटर फेस्टिवल सिटी एंड टेक दैट एग्जिट फ्रॉम सिटी सेंटर मिर्जिप. बी केयरफुल 44 पर रसल खोर से लेकर बिजनेस बे के बीच में हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा. बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन के आसपास ट्रैफिक मिलेगा आपको, एंड देन जबील की इंटरनल रोड पर भी आपको मिलेगी 2 से 3 मिनट की देर.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
2: बुड्ढे
3: नमस्ते.
2: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे.
3: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए.
2: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा.
3: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं. मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं.
2: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा, गुस्सा आ जाएगा,
4: गुस्सा आ रहा है. देखिए
3: ये गुस्सा नहीं है.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: It's game on with Big Ticket.
3: A guaranteed 25 million dirham prize.
2: Five winners of 1 million dirhams each.
3: Plus weekly draws.
2: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: Hey, jaldi hata tera khadara. Chal hata. Are jaldi hata.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: It's 9:41 o'clock and let's take a look sabse pehle at the capital Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic kabhi bhi milega at Muzaffar Industrial, and this is going towards Rabdan. Iske alawa Mafraq Industrial Area going towards Baniyat, heading north on E11 also. You'll find a bit of congestion. Chalte hain Dubai Sharjah ki aur. The usual DLC, Dubai South heading north, you'll find on 311. 3-4 मिनट की देर. इसके अलावा एवरीथिंग इज स्मूथ फ्लोइंग ऑन E11. जो ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट का ट्रैफिक था वो अब क्लियर हो चुका है. वेरी गुड न्यूज आउट देयर. देन E44 पर अलखेल रोड गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे, एंड देन 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. बोथ दीज आर्टरीज विल फाइंड मैक्स अराउंड 6 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम.
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा. इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: हां जी बिल्कुल सही. गुड मॉर्निंग. 10:18 हो चुके हैं. ज़ोहरा के साथ ऑन द बिग मिक्स. वी आर करंटली टॉकिंग बॉलीवुड के विलन्स और ऐसे ऐसे विलन्स जिन्होंने मतलब बहुत सारे हफ्ते, बहुत सारे महीने, सालों साल आपको डराया और आपके सपनों में आए, नाइटमेयर्स आपको मिले. ऐसे कुछ कैरेक्टर्स रह जाते हैं, यू नो, सम ऑफ देम प्ले दैट पर्टिकुलर रोल विद सच परफेक्शन एंड दे गिव यू नो सो मच जस्टिस टू दैट कैरेक्टर कि वो इट जस्ट स्टिक्स विथ यू. ऐसे बहुत सारे रहे. तो कल बेसिकली मैंने देखी वो सीरीज कॉल्ड राख. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट. इनक्रेडिबली वेल मेड. नंबर वन तो वो इट्स ऑल्सो यू नो दैट बीन इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज. इट्स बीन लूजली इंस्पायर्ड बट फिर भी यार मतलब आई थिंक इट वॉज मेड सो ब्यूटिफुली दैट यू हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसकी जो कास्टिंग थी अकॉर्डिंग टू मी वॉज अ 10/10. उज्ज्वल हैज समथिंग टू से ओवर हियर.
3: Oh my god.
2: Did you two get nightmares? Because I could not sleep.
3: It's a very hard hitting show, but because it's such a hard hitting show, I just want to give it to everyone. Aur jo mujhe aisa lagta hai ki hamari responsibility bhi honi chahiye. You know, when we say that the content is great, it's impeccable, it's a must watch, you should, it's a must watch.
2: Correct.
3: But first of all, you need to figure out that do you have the grain in you to watch a content like that?
2: Yeah.
3: If you're not mentally ready, if you're not ready to a point that it becomes extremely brutal. शायद अपनी पर्सनल जिंदगी में आप कुछ ऐसी उतार चढ़ाव यू नो बड़ी स्पेस में हो गए.
2: दैट
3: इज द टाइम देन यू शुड नॉट वॉच इट. यू शुड वॉच ओनली इफ यू कन्विंस दैट यू कैन वॉच सच अ हार्ड सब्सटेंस स्पेशली फॉर द पेरेंट्स. आई एम टेलिंग यू यू नो लाइक जो लाइक मी यू नो वी गाइस आर पेरेंट्स.
2: एब्सोल्युटली गट रेंचिंग.
3: तो अगर आप उस कंटेंट को देखने के लिए रेडी हो साइकोलॉजिकली देन ओनली आई एडवाइज यू
2: टू वॉच इट लाइक एज अ सेपरेट पर्सन, एज अ डिफरेंट पर्सन. लाइक यू कैन नॉट पॉसिबली बी योरसेल्फ, लाइक बी अ मॉम और बी अ डैड एंड वॉच इट विद दैट यू नो.
3: करेक्ट करेक्ट. बिकॉज़ यू नो व्हेन यू क्रिटिकिंग और व्हेन यू talking about the show and you're raving about the show, of course we know it's a fantastic show, but I'm just saying that you also have to be ready for that kind of show. So if you're not ready to watch like a gut rent, because my wife she left the show in like 1.5 episodes.
2: Oh my god,
3: she said I can't watch this anymore. Because
2: I binged it. I binged it because I had to. It was so well made. Because, you know, I appreciate because aisi cheeze dikhana and especially usko justice dena, what you're going to feel in that moment, it is very difficult. Not many actors can do that.
3: Aur wo jo protagonist hai, wo jo villain hai, jo pura khel hai ranga billa ka jo pura dikhaya hai, wo itna achha kaam kiya hai usne ki usko dekhte hi nafrat ho rahi hai.
2: Do you know that this guy has been in the industry for about 14 years now? 14 saal bechare ne bahut try kiya. He was also in भूल चूक माफ, छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था. बट बेसिकली दिस पर्टिकुलर रोल दैट ही प्लेड, ही वाज ऑडिशनिंग विद अबाउट 800 अदर एक्टर्स. 800 अदर एक्टर्स एंड आफ्टर 6 राउंड्स ऑफ ऑडिशनिंग उसको बोल दिया गया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, आपको जाना होगा. हाँ, नहीं हो पाएगा. एंड ही लेफ्ट. ही स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर अदर थिंग्स एंड ही रैंडमली गॉट अ कॉल सेइंग यू हैव बीन सिलेक्टेड, कम बैक.
3: ओह माय गॉड.
2: सो इमेजिन जब इसकी किस्मत खुलती है, मतलब कैसे खुलती है.
3: मतलब आई कांट टेल यू दैट वो इतना कन्विंसिंग है कि अगर वो आपके सामने कहीं बॉम्बे अगर आप गए हो, अगर समर वेकेशंस में अगर आपके सामने वो आ जाए तो आप उसको मारना शुरू कर दोगे. मतलब आप में इतना, इट इज सो well
2: he
3: done.
2: He said that himself, you know, that he's been getting threats from people all over the world and he's just been trying to convince them that was a role I played, it is not me. But then he went on to say that agar wo aa rahe hain mujhe, it means ki maine bahut sahi kaam kiya hai.
3: Anyway, I just wanted to make this point that only if you're ready psychologically you should watch this show. Take your time and then figure out. Otherwise, from Zoe, what she's trying to tell you is that it's a fantastic,
2: impeccable,
3: very well blown show.
2: Okay, well, one last question. So because I was getting to this, isi mein se, like there are some actors jo, you know, the typical wale Bollywood villains nahi hai, small time actors jinhone bahut बहुत ही बढ़िया विलन का रोल प्ले किया है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सच विलन हूज प्लेड सच अ गुड रोल दैट यू हेटेड
3: हिम? लगते हैं
2: हेटेड हिम टू द कोर.
3: द फर्स्ट थिंग दैट केम टू मी इज आशुतोष राणा.
2: उसमें एक आदमी ने नसार, आई थिंक द एक्टर्स नेम इज, ही प्लेड द रोल ऑफ बाबजी.
3: Okay.
2: That was the lead villain in that particular movie.
3: Oh, okay.
2: That character I hated so bad ki agar mere samne aa gaya I would want to like do something really, really nasty to that person. But that is one name that I can think of as an actor who's done a fab job portraying that villain. If you can think of any such unconventional villainous characters, hai na, jo chote mote actors hai, but itna badiya villain ka role play kiya that you actually hated this person's guts, let me know. 800-1062 is the number. You can call me.

0: मिलाने मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगता था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली
1: बिग 106.2 The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: बर्फ तो नहीं पड़ने वाली है लेकिन बारिश जरूर गिरने वाली है। प्रिडिक्शन यही है कि आने वाले 3 दिनों में बारिश गिरने वाली है। मोर ऑन दैट इन जस्ट अ बिट। फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी 46% पे, हाईज आ जाएंगे 36 तक, लोज विल ड्रॉप डाउन टू 32।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
5: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
6: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: टू द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जोहरा के साथ हूँ अपॉन द बिग मिक्स। हम बात कर रहे थे अबाउट अनकन्वेंशनल बॉलीवुड विलन्स। विथ मी ऑन द फोन लाइन टू टॉक अबाउट दैट इज एजे। एजे, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैम,
1: क्या हाल है?
2: जी मैम, हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप मैम मत बोलो, आप मुझे जोरा बोल दो। ठीक है, चलो मैं आपको एजे बोल रही हूँ, आप मुझे जो बोल दो। अरे कोई बात नहीं यार, व्हाटएवर इज नेचुरल टू यू। एजे, अच्छा, यू कॉल मी टू टॉक अबाउट विलन्स, है ना, बॉलीवुड के विलन्स। आपने कहा नासिर, जिनकी मैंने बात की, जिन्होंने बापजी का रोल प्ले किया था, सो स्केरी। अपेरेंटली ऑफ कोर्स नॉट मेनी पीपल नो, बट ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड, वेरी वेरी बिग नेम, स्पेशली साउथ में, है ना? बट इफ यू हैड टू,
2: मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं मद्रास हूँ।
1: इसीलिए आपको पता है उनके सारे कैरेक्टर, सारे रोल्स। बट अगर आपको पिक करना रहे, इफ देयर इज एनी वन पर्टिकुलर विलन जिन्होंने प्ले किया हो, ऐसा कोई कैरेक्टर दैट रियली रियली स्केयर्ड यू, आप किसको चूज करोगे?
2: 90s में बोलेंगे तो शोले फिल्म के विलन थे ना वो।
1: अरे बट वो तो टिपिकल विलन हो जाते हैं ना, जिनका मतलब सबने बात की है।
2: अभी नया देखेंगे तो अक्षय खन्ना का पूछ सकता हूँ मैम, ऐसे हीरो बहुत खतरनाक धुरंधर में किए थे।
1: हाँ,
2: रियली वो सेम टू सेम वो रियल किए थे, उसके बारे में भी सुना है
1: ऐसे ऐसे। हाँ करेक्ट, जो हीरोज है उनको अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा करना चाहिए, एंड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हीरोज ऑल द टाइम, आई थिंक दे शुड स्टार्ट प्लेइंग विलन्स, जैसे अक्षय खन्ना ने
2: किया। मल्टी रोल आजकल कर रहे, जैसे हमारे दादा जो है संजय दत्त।
1: संजय दत्त
2: उनका भी एक्टिंग जबरदस्त, इसमें देख सकते हैं आप।
1: जैसे
2: बेंगलुरु का मूवी था ना,
1: हाँ, जैसे ही कैन प्ले द फनी कैरेक्टर मुन्ना भाई में, बट ही कैन आल्सो प्ले अग्निपथ जैसा कैरेक्टर, याद है?
2: वाओ, वो रियली वो, और एक फिल्म आया था ना मैम बेंगलुरु का, जो कर्नाटक का बहुत फेमस हुआ था,
1: क्या
2: नाम मेरे को नहीं आ रहा है,
1: मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, बट यस, संजय दत्त 100%, आई थिंक दैट यू हैव कॉट वेरी वेरी करेक्टली, ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, वेदर इट इज द हीरो या द विलन, बहुत अच्छा रोल।
2: यस यस, और उनका जो मेकअप जो है ना, वो एकदम डरावनी दिखता है,
1: खराब
2: दिखता है उनका जो, हाँ, उनका जो टैटूज लग के, उनके बॉडी का लैंग्वेज, वाओ।
1: आई थिंक वो भी है, सारे एक्टर्स का मतलब फेस ऐसे ऐसा नहीं है दैट यू नो यू कैन प्ले विद,
2: इनको पूरा सूट होता है,
1: करेक्ट,
2: इनको पूरा सूट हो जाता है,
1: इनको पूरा होता है, एब्सोल्युटली।
2: अक्षय खन्ना को सूट नहीं होता, लेकिन एक्टिंग खतरनाक किए थे।
1: दैट इज ट्रू 100%। चलो, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है अक्षय खन्ना एंड संजय दत्त, वेरी वेरी टू गुड पिक्स। Thank you so much for calling, AJ. It was very, very nice talking to you. Thank you. Thank you so much, AJ. Have a great day. Bye. AJ ने कहा है, according to him, अगर कोई अच्छा विलन का रोल प्ले कर सकता है recent picks में अक्षय खन्ना, which I think everyone is, you know, in agreement with after धुरंधर, but संजय दत्त का इनका मानना है कि he is a very very good villain, which I also agree with, and this is a good topic, you know, अगर बॉलीवुड heroes को experiment करके विलन बनना पड़े, आपको क्या लगता है कौन से आजकल के ऐसे हीरो है जिनमें वो विलन वाली क्वालिटी है? लेट्स टॉक अबाउट दैट दिस आवर।

0: 10:46 हो चुके हैं, ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू द जंगल से राइट हियर ऑन पेग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड, यू विद मी ज़ोहरा ऑल द वे अंटिल 2. वी हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो. आई विल बी कीपिंग यू कंपनी आने वाले और 3 घंटों के लिए, एंड वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ फन स्टफ, जिसमें से एक टर्म आपने देखा होगा वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड्स, यू नो, ऑन पोस्टर्स एवरीवेयर, ऑन सोशल मीडिया. इट्स कॉल्ड दुबई इट. If you are also wondering ki ye kahan se term nikla, kyun nikla, what it really means, we're going to be talking about that. What is Dubai It and how you can be using it to look cool as well. Right here on Big 106.2, this is the beat of Bollywood.
1: Apni

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
5: Listen to her every day.
6: Mugembo! Khush hua!
7: What do you want to say about this research that says men at work, call it networking or probably strategic updates, but basically it's a fancy aesthetic word for gossip.
8: 200% agree. I used to work in HR.
7: Oh, nice!
8: And I used to have the department heads coming to me asking for everything as what happening in different departments.
7: So yeah, men do come to you and ask about kiski salary badh rahi hai, kaun jo hai is baar promote hone wala and all of that, right?
8: They would try to do and what's happening with that situation that was there. So we know what we need to prepare for the next quarter and next year and all that.
7: So they have a way of getting involved in the corporate politics, but they don't call it gossip, they call it getting updates. Of course, HR has all the gossip. HR and finance people, I think you should be very, very friendly with them. They will give you all the information.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: 36 degrees Celsius outside, highs aaj se zyada nahi jayenge, humidity is at 47%, lows will drop down to 32 tonight.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

11:45 हो चुके हैं, we're heading into hour number 3, 12 बजने को आए हैं, ज़ोहरा के साथ हो आप, this is the big mix, I keep you company आने वाली और दो घंटों के लिए, right here on Big 106.2, this is the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: What's up, everyone? 106.2

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
5: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz?
1: Yes,
0: sir, no.
2: Chance for you to win a staycation, alright? Are you guys ready?
3: Yeah.
2: S-N-S-C-E-E-N.
3: Big Ashi.
2: Ashi, boliye.
3: Sunscreen.
2: Absolutely correct. One nil in favor of Ashi. Next one. S-U-G-L-S-S-S.
4: Big Neeraj.
2: Big Neeraj.
4: Sunglasses.
2: Correct. And here's the tiebreaker. Okay. B-E-C-H.
4: Big Neeraj. Beach.
2: Absolutely correct. Neeraj, aapne baazi maar li. Beach is the correct answer. Ashi, it was a photo finish. How much does it mean to you? How badly do you need this staycation? Tell me.
4: Yeah, my daughter is coming for a vacation. She's studying in Europe. It will be great if we go together with her.
2: Wonderful, yeah. That reason enough. I think ek aur brownie point aapko mil gaya uske andar. But congratulations, aapka naam draw ke andar chala gaya hai.
4: Thanks.
2: Plus, on the spot, Neeraj, we won't allow you to go back empty-handed. Aapne jeet liya hai 2 Vox tickets and an F&B voucher as well. Congratulations!
4: Thank you so much. Thank you.
0: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लाइट ट्रैफिक मिलेगा अगर आप क्रॉस कर रहे हैं मेरो सिटी सेंटर 4 से 5 मिनट का डिले थोड़ा सा आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल सकता है D89 मखतूम स्ट्रीट इन पोर्ट सईद वहां पे हैवी ट्रैफिक है फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स E11 इतिहाद स्ट्रीट वहां पे आपको मिल सकता है हैवी ट्रैफिक दिस इज इफ यू आर क्रॉसिंग D80 सलादीन स्ट्रीट उसके अलावा लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक आपको मिल सकता है D85 बनिया स्ट्रीट अल रिग्गा एरिया के पास एक कार एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुआ है दिस इज अराउंड अल सबका स्ट्रीट which is crossing Al Ras. Any other traffic update, you can let us know on 4305.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: You know, कुछ चीजों को सिर्फ अपने दिमाग में ही रखना चाहिए. मतलब intrusive thoughts, these wild thoughts that you get should sometimes remain in your brain only, because when you put it out loud and when you say it out loud, it is just very very silly, very very ridiculous. ऐसी अब एक चीज मैंने पढ़ ली जहाँ पे something is all set to be launched for adults. Now this thing that I'm talking about is usually meant for kids, for little babies. को बहलाने के लिए ये चीज use करी जाती है और अब ये adults के लिए बन रही है. No, it's not what you think. थोड़ा वेग रख रही हूं सो दैट यू कैन ऑल्सो गेस व्हाट दिस थिंग इज. लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट आवर एंड व्हाई इट शुड नेवर बी लॉन्च्ड. मोर ऑन दैट इन जस्ट अ बिट ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: What's up, everyone?

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली
2: है. कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी, 36 डिग्री सेल्सियस बाहर. आज हाईज इसी के एक्सपेक्टेड है. लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 32. ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए फिलहाल 50% पर है.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
3: Mugembo! Khush hua!
4: What do you want to say about this research that says men at work call it networking or probably strategic updates, but basically it's a fancy aesthetic word for gossip?
5: 200% agree. I used to work in HR.
4: Oh, nice!
5: And I used to have the department heads coming to me asking for everything as what happening in different departments.
4: So yeah, men do come to you and ask about kiski salary badh rahi hai, kaun jo hai is baar promote hone wala and all of that, right?
5: They would try to do and what's happening with that situation that was there. So we know what we need to prepare for the next quarter and next year and all that.
4: So they have a way of getting involved in the corporate politics, but they don't call it gossip, they call it getting updates. Of course, HR has all the gossip. HR and finance people, I think you should be very, very friendly with them. They will give you all the information.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड मॉडरेट ट्रैफिक है, बट काफी लंबा स्ट्रेच यार। 89 से शुरू होता है ये, गोइंग ऑल द वे अंटिल S102 शारजा रिंग रोड। 15 मिनट का आपको डिले मिलेगा। E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स नादा 1, हैवी ट्रैफिक, एटलीस्ट अबाउट एन 8 मिनट डिले ऑन दैट रोड। D93 नादा स्ट्रीट पर आपको मिलेगा थोड़ा सा बंप टू बंपर ट्रैफिक गिसेस 2 के पास। थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा नादल हमार स्ट्रीट पे गोइंग टुवर्ड्स D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट। एक छोटा सा कार एक्सीडेंट ऊद मेहता में हुआ है D84 जबील स्ट्रीट पे, causing at least about a 12-minute delay. Any other update, you can let us know 4305.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हाँ जी, good afternoon. 1:32 हो चुके हैं. Zohra के साथ आप on the Big Mix. I keep you company until 2. फिलहाल, there's a big surprise that we have planned for you. Yeah, if you two have been waiting कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है and अब नहीं यहाँ पे रहना, मतलब कुछ तो करना है, something that is a sort of an escape, right? If you don't have enough leaves in hand, then you can't travel abroad. यहाँ पर ही एक छोटी सी छुट्टी आपको मनानी है, तो वो हम आपको मौका देना चाहते हैं यार. Starting next week, which is this week, Big 106.2 is giving you the ultimate stay के plan. अब ये stay के कहाँ पे, कैसे, क्यों, किस किस के लिए, this is for everyone, मतलब your entire family. ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको भेज रहे हैं या आपके साथ एक प्लस वन को भेज रहे हैं, आपकी फैमिली को भेज रहे हैं. This is your family staycation opportunity. The big summer surprises, presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almerid Ras Al Khaimah. This is the ultimate family staycation यार, at the stunning Rixos Almerid in Ras Al Khaimah. It's the perfect place है ना, यहाँ पे आप रिलैक्स करो, अनवाइंड करो, फोटोज खींचो, रीले बनाओ, जस्ट मेक मेमरीज. यू कैन चूज इफ यू वॉन्ट टू जस्ट चिल.

0: यार जो भी बोल दो यार, ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा, बट ओरिजिनल इज यू नो एन ओरिजिनल फॉर अ रीजन, इफ यू नो यू नो. ऑन दैट नोट मेरा यहाँ जाने का वक्त हो चुका है. मेरी आवाज़ मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, यू कैन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ज़ोहरा अमीन इज माई हैंडल ओवर देयर. ऑल्सो मेक श्योर टू हिट द फॉलो बटन 106.2 बिग एफएम पे. वी शेयर ऑल फन डेली कॉन्टेंट विद यू ऑन आर सोशल्स. मेक श्योर टू फॉलो अस ओवर देयर एंड शो सम लव. आई नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

रहता तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हम उससे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को करेक्ट करना, ऑटो करेक्ट करना अक्सर यू नो चैट जीपीटी और एआईज का काम है, लेकिन जो असली करेक्शन होता है वो अपने आप से ही होता है ना. एंड ये जो ज्ञानी बाबा हैं उज्जवल खन्ना, ये यही आपको कह रहे हैं कि कभी कभार यू हैव टू डीप डाइव इनसाइड एंड सी व्हाट मिस्टेक्स हैव यू मेड इन द पास्ट विद पीपल, विद एसोसिएशंस, यू नो, विद अंडरस्टैंडिंग स्मॉल बेसिक थिंग्स, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू एड्रेस यू नो ऑल दीज थिंग्स टू योरसेल्फ, टू योर इनर कॉन्शियंस, एंड देन यू विल एनालाइज डीप डाउन डीपली, ओ माय गॉड, ये मैंने किसको ट्रस्ट कर लिया, मैंने किस पे विश्वास कर लिया. पर ठीक है, यू नो, यही है, आदमी जो है वो गलतियों का पुतला है और धीरे धीरे ही समझता है सब चीज़ें. हौले हौले हौले हौले हौले हौले एक चीज़ की गलती बिल्कुल मत करना, मैं वापस आऊँगा का इंतज़ार ऑन ओटीटी. आई थिंक द बिगेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट इम्तियाज अली हैज़ चोजन फॉर दिस फिल्म इज़ पीपल देमसेल्व्स. इट इज़ डूइंग वंडरफुली वेल फ्रॉम पीपल्स वर्ड ऑफ माउथ. और कितना प्यारा वर्ड ऑफ माउथ के एक्सप्रेशन से यू नो ये फिल्म का कारमा चल रहा है. ऑफ लिटरली नथिंग इन द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक टू यू नो 115-120% हाइक. दैट्स द ब्यूटी ऑफ वॉट पीपल कैन डू एंड दे कैन क्रिएट डिफरेंसेज ऑन कॉन्टेंट, ऑन सिनेमा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद ईच अदर. लेट्स किक स्टार्ट विद द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म ओनली एंड द ट्रैक इज तेरे पास में, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है इस वक्त इंस्टाग्राम पे भी. टेक इट अवे आपके साथ अंटिल 5. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ बिग 106.2 पे, वी आर पार्ट ऑफ फन नेशन नेटवर्क, मेरे एंड यूजुअल खन्ना के साथ.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
3: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, the beat of Bollywood. When life becomes a game, you start playing kabaddi.
4: AJ, you called me to talk about villains, है ना, Bollywood के villains. आपने कहा नासिर, जिनकी मैंने बात की, जिनका जिन्होंने बापजी का रोल प्ले किया था, so scary. Apparently, of course, not many people know, but he's a very, very renowned, very, very big name, especially South में, है ना? If there's any one particular villain जिन्होंने प्ले किया हो, ऐसा कोई character that really, really scared you, आप किसको चूज करोगे?
5: अभी नया देखेंगे तो अक्षय खन्ना का पूछ सकता हूँ मैं. ऐसे हीरो बहुत खतरनाक धुरंधर में किए थे.
4: आई थिंक बॉलीवुड के एक्टर्स जो हीरोज है उनको अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा करना चाहिए, एंड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हीरोज ऑल द टाइम, आई थिंक दे शुड स्टार्ट प्लेइंग विलन्स, जैसे अक्षय खन्ना ने
5: मल्टी रोल. या मल्टी रोल आजकल करें, जैसे हमारे दादा जो है संजय दत्त.
4: Sanjay Dutt is.
5: Unka bhi acting zabardast.
4: I think that you've caught very, very correctly. He's a very, very good actor, whether it is the hero or the villain. Bahut acha role.
5: Yes, yes.
0: Heartfelt and feel good times. Monday to Friday, 2 PM to 5 PM. The Big Life with Ujjwal. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by insurancemarket.ae.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: And the answer is Papala Papadoms. उफ उफ उफ उफ उफ उफ उफ फ्राइड तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है, हालांकि फ्राइड खाना नहीं चाहिए, रोस्टेड ही खाना चाहिए पापड़। लेकिन पापड़ का अगर बात करूं एवोल्यूशन तो 2000 पहले कुछ आया था। सबसे पहले मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर, थैंक यू, एंड आई थिंक यू आर अ ग्रेट पापड़ गर्ल एंड दैट्स व्हाई यू जस्ट कॉल्ड मी इन अ फ्लैश। ओके, नाउ कमिंग बैक 2000 ईयर्स पहले, रेफ्रिजरेशन से पहले ये प्राइमरी चैलेंज था ऑफ यू नो टू सॉर्ट ऑफ प्रिजर्व सीजनल प्रोड्यूस। और उसके बाद ये जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में देखें तो ये जो थिन वेफर टाइप का जो बनता है दाल से बनता था, एंड दिस वाज लाइकली देन कॉल्ड अ पापड़। सन ड्राइंग मैकेनिज्म्स में फिर इंडियंस ने मास्टर किया द आर्ट ऑफ सन ड्राइंग, विच वाज द डो दैट वाज मेड फ्रॉम लेंटिल्स एंड स्पाइसेस। और सारा मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद दे क्रिएटेड अ प्रोडक्ट दैट कुड लास्ट फॉर मंथ्स विदाउट स्पॉइलिंग, प्रोवाइडिंग अ वाइटल सोर्स ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। अब इसके रीजनल डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारे हैं, नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पर दाल से बनता है, देन अगर आप साउथ में जाओ देन इट बिकेम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, वहाँ पे यू नो दे ईटन मोर पफ्ड अप वे। बट हाँ, जो सम टोटल है वो ये है कि कुछ ना कुछ क्रंच आपके मुंह में जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पापड़। एंड अगर आप राजस्थान साइड में जाते हो तो वहाँ पर तो पापड़ की सब्जी भी खाते हैं लोग, यू नो प्याज पापड़ की सब्जी भी बना के खा लेते हैं। सो आई थिंक विदाउट पापड़ देयर नो क्रंच literally with desi food, and that's the first thing that you keep on hogging till the time your food arrives, like I told you thodi der pehle as well. Stay locked on Big 106.2 pe fast track song of the hour brought to you by Self Drive. Take it away, the track is Man Mera Gajendra Verma ki awaaz.
1: Big 106.2 fast track song of the hour brought to you by selfdrive.ae.

0: आतिफ असलम की आवाज़ द ट्रैक इज जीने लगा हूँ। इसके बिना तो जीना मतलब बड़ा मुश्किल काम है। जब ये ख़त्म हो जाए आपके किचन में तो आपको लगता है अरे भाई सबसे पहले ये लेके आ।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: फूड ट्रेल्स में आज मैं बात कर रहा हूँ इज वेरी डिलिशियस स्टार्टर एकॉम्पलीमेंट सबकी। बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ, आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। वेल, मैंने आपसे पूछा था, ये बहुत ही सिंपल सा एक जुमला, आई एम अ थिन डिस्क क्रिस्पी एंड ड्राइड, समटाइम्स आई एम रोस्टेड, समटाइम्स आई एम फ्राइड, क्रश मी ऑन राइस और ईट मी फॉर क्रंच, आई एम द लाउडेस्ट कंपेनियन एट लंच, व्हाट एम आई, आई एम द ट्रैक, ट्रैक कह रहा हूं,

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
2: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Think car rentals are expensive? Think again, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour आपने सुना, brought to you by Insurance Market. लता मंगेशकर जी की आवाज, DDLJ का ये क्लासिक गाना. सारे गाने क्लासिक हैं, इमोर्टल हैं, ब्लॉकबस्टर हैं, कल्ट है. एंड ये फिल्म, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, आपको पता ही है. बिग 106.2 पे दिस इज द बिग लाइफ. वी टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसी फिल्में 90s की जिसमें बहुत सारा टिशम टिशम टिशम हुआ और परिवार फैमिली फ्यूड.
2: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ
1: वो सामने निकल कर आया. और उसके बाद आपको पता है कि जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो फिर वो निकल लेते हैं, फिर वो परवाह नहीं करते समाज का. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे. आज दिल को पूरे 36 साल हुए हैं. वेल, DDLJ की बात करूँ तो आपको पता है, 36 साल हों या 3600 साल हों, आई थिंक ये फिल्म सबके लिए अमर रहेगी. एंड आई गेस हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे के बच्चे, आई थिंक इस फिल्म का क्लासिक एग्जाम्पल देंगे अबाउट हाउ दिस फिल्म वॉज मेड एंड इट वॉज शॉट. I think one of the best impacting scenes was Amrish Puri or Anupam Kher, both of them together, and they are fighting for Shah Rukh Khan. Have a listen.
3: I don't want to hear anything else. You go here. Your son has given us all the trouble. He has shown his power. I will give my son like this. Stop, Chaudhary
4: Sahab, stop! Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. My son is my pride. My pride is my pride.
1: और उसके बाद आपको पता है कि क्लाइमेक्स सीन होता है और फिर हाथ छोड़ देते हैं अमरीश पुरी साहब शाहरुख खान काजोल का. एंड देन ऑफ कोर्स शी गेट्स इनसाइड, गेट्स ऑन टू द ट्रेन. स्टे लॉक्ड ऑन टू बिग 106.2. कुछ ऐसी फिल्में, प्यार किया तो डरना क्या. बड़े भैया अरबाज खान, वेल ही वॉज एंटी सलमान खान इन द फिल्म, काजोल के साथ थे. एंड अगेन इट वॉज अ ग्रेट मेलो ड्रामा फॉर अस, अ पीस फॉर अस टू वॉच. And we thoroughly enjoyed every moment of this film. Take it away. The track is Orli Chunariya Tere Naam Ki. That's what I'm playing. 90s ke kuch blockbuster gaane jisme family kaleshon ke beech mein pyar wo amar ho jata hai. Take it away.

0: think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से.
2: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अगेंस्ट द फैमिली परिवार युद्ध, और साथ में एक छोटी सी जो लॉ है वो जल रही है प्यार की, कि ये शायद प्यार जो है परवान चढ़ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट भाग्यश्री सलमान खान, कुछ ऐसी फिल्मों की बात कर रहा हूँ आज जब अगेंस्ट द फैमिली जाके करा जो करना था, प्यार मोहब्बत इश्क, एंड उसके रैमिफिकेशन दिखाए नहीं गए क्योंकि तब पिक्चर खत्म हो जाती है। बिग 106.2 पे आज 36 साल हुए दिल को, सो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द 90s फिल्म्स, ऑल दोस क्लासिक फिल्म्स जहाँ पे ये हुआ कि भाग गए, घर वालों के अगेंस्ट चले गए, ये सब करा। और यही एक फिल्म है जिसने हमें ये भी बताया कि अ लॉट ऑफ टाइम्स समटाइम्स द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स लिसनिंग टू देम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट यू गेट टू नो आफ्टर लाइक इयर्स ऑफ यू नो यू ऑलरेडी बीन इन अ रिलेशनशिप। एनीवे द ट्रैक इज अदाई भी है मोहब्बत भी है फ्रॉम द फिल्म दिल है कि मानता नहीं, आपके साथ अंटिल 5 आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ उज्ज्वल खन्ना के साथ।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर ये गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
4: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: गुड इवनिंग टू यू, बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। अभी का तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी अबाउट 52%, विल गो डाउन टू मिनिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस। इस हफ्ते बोला गया है कि बरसात हो सकती है, अब कहाँ होगी बरसात उसका पता नहीं है, बट रेन विल हैपन। आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन बैक इन इंडिया एंड बैक इन द सब कॉन्टिनेंट, बैक इन पाकिस्तान, एंड आई गेस जो साउथ वेस्ट मानसून है इट इज़ उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा, सो लेट्स होप दैट थोड़ी सी बारिश, इट्टू सी बारिश यहाँ पे भी हो जाए। अब नेक्स्ट कम्स इन दिस सॉन्ग विच इज़ लाइक रेन डांस, द ट्रैक इज लम्हा लम्हा, अभिजीत की आवाज़ फ्रॉम द फिल्म गैंगस्टर, आपके साथ अंटिल 5, दिस इज द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे।
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2, The Beat of Bollywood.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
2: Score!
3: 25 million dirhams with big tickets.
2: 5-1 million dirham prizes.
3: Plus weekly cash draws.
2: Don't miss your shot.
3: Buy now at BigTicket.ie.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
6: सुनो जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अरमान मलिक की आवाज में टाइम टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड बिग 106.2 पे आप सुन रहे थे द बिग लाइफ. वेल फॉर ऑल द वंस हु आर लाइक पेट पेरेंट्स,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: उनके लिए लाइफ एकदम बड़ी होने वाली मानसी.
2: कैसे?
0: क्योंकि दुबई में एक आइलैंड आया है, वहां पे दे हैव मेड लाइक अ पेट बीच. For them.
2: Wow, so cute.
0: Would you like to know the name of this place?
2: Yes.
0: It is Dubai Island. Okay. So it's a newly developed entire project. Huh. And wahan pe, like the beach is pet friendly. You can go, you can have fun time with your pets. And you know, all these fur animals, they can just go chill. Then there's no restriction on the pets, so you can take them. Like, it's the first ever beach where you can take your pets.
2: Yeah, I'm very excited. I'll just go there. I don't have a pet here, but I love to pet pets.
0: But tere paas teen pets hain back in India.
2: हाँ, पर वो इंडिया में
0: उनको कहाँ घुमाने ले जाती है, कौन से बीच पे?
2: इंडिया में जानता नहीं कौन है तेरा ओनर.
0: बट अगर जैसे कभी कभार बीची टाइप का कुछ माहौल बनाना हो तो क्या करते हो तुम इंडिया में? बाथटब?
2: नहीं, बारिश वारिश में ऐसे कूद फंद लेते हैं कीचड़ में.
0: अरे उसके पेट्स बोले क्यूट है यार. तीनों के नाम क्या है?
2: दिलावर, जोरावर.
0: ये देख लो, दिलावर, जोरावर और
2: रानी कुल्फी. पांच है मेरे.
0: रानी कुल्फी और
2: जो स्ट्रे है ना, लाइक द रेस्क्यू, उसका नाम कडल्स रखा है इंग्लिश.
0: कडल्स.
2: और जो ब्रीड है उनका नाम दिलावर जोरावर.
0: अच्छा, tell me this thing. I was watching this reel जहाँ पे you know एक पापा है, उनके 9 बच्चे हैं. Bless the papa. और पीछे से बच्चे आवाज दे रहे हैं और the father has to guess the voice.
2: Right.
0: कि कौन से बच्चे ने आवाज दी. Does it happen with pets as well? Can you identify that tere paanch kutte mein se kiska bark kaisa hai?
2: Yeah.
0: Really?
2: Yeah.
0: No.
2: Difference in the way they bark.
0: Really?
2: Yeah, of course. उनमें भी होता है, किसी की बहुत चुभने वाली आवाज है, किसी की बाहरी है, कोई काऊ काऊ. So yeah, there is a difference. Yeah.
0: Well, I didn't know that. मुझे तो लगता था कि सबके सेम ही आवाज आती है. Okay, all right. On that note, I guess Mansi की आवाज सुनने की बारी है दिलावर जोरावर के बाद. And 5 to 9, she comes in, and of course, she brings in a lot of surprises as well with a big summer surprise. And hopefully, you get to win a lot on Big 106.2. Wrapping it up from my side. God bless you and your family. Stay safe. Drive safe.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. फिर से आ गया है मंडे, बट यू नो व्हाट, टाइम इज लिटरली फ्लाइंग. मार्च के बाद जून ऐसा आया कि पता ही नहीं चला. मार्च को तो याद ही मत दिलाओ. फिलहाल आई सेड टू गिव यू कंपनी हियर अंटिल 9. मैं हूं मानसी. होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड. एंड आशाम इज गोना बी वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज आशाम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. योर चांस टू विन अ स्टेकेशन एंड सम फैंटास्टिक प्राइजेस. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इन जस्ट अ बिट. राइट हियर, किक स्टार्टिंग द शो विद

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is The Big Thrill, and of course it's time for the big surprise. It's time for the big summer surprise, wherein you get a chance to win yourself a staycation at the stunning property, which is Rixos Almerid in Rasal Khaimah. Bahut hi simple hai, aapko participate karne ke liye, register karne ke liye ek message karna hai. BSS apna pura naam, hamare WhatsApp number pe, which is 0543091062. We'll play a fun game here. If you manage to crack it, of course, aapka naam draw mein jayega for the staycation. Plus, aaj sham aap jeetenge open movie tickets plus F&B vouchers. So, if you want to enjoy and have a great time this summer, just send in those entries. BSS apna pura naam to 0543091062.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almerid Rasal Khaimah.
2: जब तक आप मैसेज कर रहे हैं फॉर द बिग समर सरप्राइजेस, ट्रैफिक में बैठे बैठे हम क्या करते हैं, वी प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ मजेदार गेम जो हम हर शाम खेलते हैं. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. हाँ, मुझे पता है साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. खेलने के लिए बस फोन करना 800-1062 पर, कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9. मंडे को थोड़ा सा भूलते हैं एंड एक स्टेकेशन के बारे में सोचते हैं. राइट हियर ऑन बिग 106.2, a part of Fun Asia Network.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the bold flavor-packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
5: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: स्लो मूविंग ट्रैफिक, इनफैक्ट 25 से 30 मिनट का डिले फिलहाल ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद। इट्स काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर, अगर आप मर्डर से मुहैसना जा रहे हैं, गेट्स बेटर पोस्ट दैट। हैवी ट्रैफिक इफ ऑन द दुबई फेस्टिवल सिटी, नादल शिबा के पास भी आपको काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा गोइंग टूवर्ड्स गरूद, अगेन एक्सट्रीमली पैची। हैवी ट्रैफिक अगर आप है फहीदी के आसपास, ऑल्सो शेख जायद फिलहाल दिखा रहा है 25 मिनट, रुको 25 मिनट बाद एक घंटा दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं टू बजूम सुकीम, देर इज अ ट्रैफिक, देर इज अ डिले ऑफ 10 से 12 मिनट। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
5: सेल्फ ड्राइव डॉट ए नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
7: ए बुड्ढे

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is The Big Thrill. Mansi, while you're heading home, let me remind you, the Big Summer Surprises is here. Your chance to win a stunning, stunning staycation. Plus, Asham, aap jeet sakte hain movie tickets and F&B vouchers. All you need to do is register karna hai BSS, apna pura naam, 0543091062 par. And traffic mein baithe baithe, agar aap bore hote hain, toh hum khelte hain 5 second rule, just like AJ. Kaisa raha Monday?
2: Monday, alhamdulillah, good.
1: Ek achhi cheez jo aapke saath hui ho aaj.
2: Aaj ek achhi cheez mere saath hui, to hansna mat. Meeting hui thi client ke saath.
1: Okay.
2: Meri galti ki wajah se wo us meeting se mujhe wo project se hata diya, main bahut khush hu.
1: Aap khush kyun ho project se hata diya to?
2: 6 years se uske piche ghume hum log.
1: 6 years.
2: Main bahut dhur tha. 6 years se us project pe hai hum log.
1: Haan.
2: Kuch paisa nahi nikal pata, samjho aise kuch mamle the. अच्छा हुआ मेरे को हटा दिया, मैं बहुत खुश हो गया. थैंक यू बोल के.
1: आई लव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड. आई थिंक दिस इज अ मैसेज फॉर समवन जो इस वक्त कहीं फंसे हुए हैं. जब तक आप कहीं से निकलोगे नहीं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे नहीं, राइट?
2: सर्कल के अंदर फिरने से अच्छा थोड़ा सर्कल से हटेंगे तो हमको दूसरा रास्ता मिलेगा ना.
1: ये देखो आज की मोटिवेशन
2: करने के लिए
1: कर्टसी AJ. बहुत कम लोग ये बात समझते हैं सर, बहुत कम लोग. हमें लगता है कि नहीं, बस इसमें उलझे रहना है. जब तक उस उलझन से निकलोगे नहीं, कभी कभार खुद निकलना पड़ता है, कभी कभार धक्के लगते हैं, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते. बड़ी अच्छी बात की आपने. चलो अब आपको खिलाते हैं 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी है 5 second के अंदर. अगर आपने ऐसा कर लिया तो तालियां मिलेंगी, वरना मैं आगे बोल नहीं सकती. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपको हर कैटेगरी से 5 second के अंदर बतानी है, ठीक है?
2: ओके ओके ओके ओके.
1: तीन सलमान खान की मूवीज.
2: सलमान खान की मूवी. मैं एक्चुअली मैं मद्रासी हूँ, मैं हिंदी फिल्म में.
1: अच्छा, आप हिंदी फिल्म में नहीं देखते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. तीन ऐसे गाने जिनमें दिल आता है.
2: दिल आता है. सॉरी मैम,
1: गाने भी नहीं सुनते.
2: दिल नहीं आता ना.
1: Three things which are made things. Out of milk.
2: Milk out of milk मतलब केक है, और बिस्किट है, और
1: चाय, कॉफी, खीर छोड़ के केक और बिस्किट. Three things that you never ever discuss with your wife.
2: दोस्तों के साथ बाहर जाना.
1: ये देखो,
2: और
1: टाइम भी खत्म हो गया. ये तो यूनिवर्सल है, कभी भी बताते ही नहीं कि दोस्तों के साथ बाहर जाएं. तीन ऐसी चीजें जो आप करते हैं दोस्तों के साथ जब बाहर जाते हैं.
2: चाय पीना, मस्ती करना, मजाक करना.
1: ये आपने इकलौता जवाब 4 second के अंदर दिया है. तो अगर आप ये बीवी को बता दोगे कि चाय पीने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ गप्पे मारने जा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है?
2: एक्चुअली क्या है ना, मेरी बीवी मेरे को बाहर नहीं छोड़ती है, क्योंकि मैं ये केक लेने के लिए जाता हूँ, तो वो मेरा भी आप बाहर फिरिए क्या बोल के मुझे रोक लेते हैं, और मेरी बच्ची को सामने खड़ा देते हैं बस.
1: कितने क्यूट है, कह रही मेरी बीवी मुझे बाहर नहीं छोड़ती है.
2: कसम से मैम, कसम से, यही होता है. 5 second
1: rule. सर बहुत खराब खेला आपने, बट आप बड़े मजेदार बातें करते हैं.
2: मालूम है.
1: एक मुझे बात बताओ, ये आपने ऐसा किया क्या है जो वो आपको बाहर नहीं छोड़ती?
2: नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं उनके साथ टाइम नहीं देता हूँ बोल के. 10 years हो गए हमारी शादी को. उनको मैं इधर बुला नहीं पाया फर्स्ट ऑफ ऑल.
1: अच्छा,
2: उधर जाता हूँ तो भी मुझे बाहर दोस्त लोग मेरे घर के सामने आके खड़े के हॉर्न मारते रहते, तो अगर आप बाहर देखा, फोन पिक किया, तो बात नहीं करते. और वो नहीं बोल सकते, इसलिए मेरी बेटी को सामने खड़ा देते.
1: बट दैट इज वैलिड ना, आप दूर रहते हैं एक दूसरे से, साल में एक बार आप वहाँ जाते हो, तो थोड़ा टाइम तो बीवी के साथ बनता है. तो ये तो वैलिड,
2: बीवी के साथ तो बनता है, वैलिड पॉइंट है. लेकिन हमको भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए ना, हम उनसे भी तो दूर रहते हैं ना दुबई में.
1: बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बट आप उन लोगों के बारे में सोचो जो यहाँ पे भी रहकर अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते. जरा उन पतियों के बारे में सोचो. बट बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. आपने जो शुरू में बात की ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.
2: थैंक यू, थैंक यू,
1: बाय. यही है 5 second rule. आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना है 800-1062 पर.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Monday ki sham, we're playing the 5-second rule. I've got Sudesh with me. Hi, good evening.
3: Hi, good evening. How are you?
2: I'm good. How are you?
3: I'm good. Very well. Thank you.
2: Are you excited? Kal se barish ho sakti hai. Main nahi chahti hu ki barish ho.
3: No, please. We need rain.
2: No, I'm a new driver, Sudesh. Abhi main normal mausam mein gaadi theek se nahi chala pa rahi hu. Please, mujh pe barish na karwao. प्लीज
3: कैब लेके जाओ यार.
2: ये देखो, गाड़ी का रेंट भी बंदा दे, ऊपर से कैब पे भी खर्चा करे. सही बात है. देखो, जो दिखता है वो होता नहीं है. तो मेरे हाल भी वही है जो आपके हैं. नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे बारिश. बिल्कुल नहीं चाहिए.
3: बट या अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग विल हैपन. डोंट.
2: सर, मैं ना बर्षा से आती हूँ और वहाँ पे जो है कभी कभार लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं. तो मैं थोड़ा डरती हूँ उस एरिया में. बट आई जस्ट होप इफ इट रेन्स वी हैव वर्क फ्रॉम होम. दैट्स व्हाट आई कैन मैनिफेस्ट. बट आई विल प्ले द 5-second रूल इन वन गेम. सुदेश, यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर. ऑल द बेस्ट.
1: 5-second रूल.
4: ओह या.
2: 3 things that are green in color and you can eat.
3: Greek yogurt.
2: Greek yogurt green color ka hota hai? Ye kaun sa basi Greek yogurt kha rahe ho yaar?
3: I didn't hear the question properly.
2: Green in color and you can eat. Don't eat green Greek yogurt. It's very bad for your stomach. Moving on. 3 Raveena Tandon ki movies.
3: Mora.
2: शुरू तो ऐसे हुए थे सदेश के, रवीना के पोस्टर आपके कमरे में आज भी लगे हैं. मोहरा और उसके बाद गायब. अंदाज अपना अपना. सत्ता. शूल अगेन. शूल अगेन इज अ ब्रिलियंट मूवी दैट रवीना हैज डन.
3: या राइट. आई लव दैट सॉन्ग फ्रॉम दैट मूवी, सलमान एंड रवीना.
2: या एनीवे, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ. अच्छा, आगे 3 ऐसे गाने जिनमें प्यार आता है. एक मैंने ही बता दिया अभी.
3: प्यार कर.
2: हाँ.
3: मैंने प्यार किया.
2: 5 second. मैंने प्यार क्यों किया. 5 seconds. फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 things that you pick from a hotel room.
3: Toothbrush.
2: अच्छा. बस.
3: Toothpaste.
2: 3 things that you find only at a beach.
3: Sand.
2: Hey.
3: Oh my gosh. No.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: रिपोर्ट कार्ड दूं कि रहने दूं?
3: नहीं, रहने दो.
2: लगता आसान है बट है नहीं. नेक्स्ट टाइम विल बी बेटर 100%. बट वाज लवली टॉकिंग टू यू. यू हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम एंड लेट्स प्रे इट डजंट रेन टुमारो. बाय सुदेश.
3: श्योर, बाय.
2: या 5-second rule आपने खेलना है. एक ही रूल है. कॉल करना है 100-106-2 पर.

0: यू नो वॉट, सैलरी डे ऑब्वियसली अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी हेक्टिक भी। कैश निकालो, बिल्स और एक्सपेंसेस के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए एक्सचेंज सेंटर के चक्कर लगाओ।
1: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? ई एंड मनी यूज करो।
0: क्या, सैलरी के लिए?
1: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली ई एंड मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
0: जैसे क्या?
1: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
0: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
1: बिल्कुल, ई एंड मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो ई एंड मनी के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
3: insurancemarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
4: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now. Pay next year. Zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
2: What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Almyrid, Rasa Kaima. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Missed your morning buzz?
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो।
6: Chance for you to win a staycation, alright? Are you guys ready?
7: Yeah.
6: SNSC-EEN.
7: Big Ashi.
6: Ashi बोलिए।
7: Sunscreen.
6: Absolutely correct. One nil in favor of Ashi. Next one. SU-GL-SS-S.
8: Big
6: Neeraj. Sunglasses, correct. And here's the tiebreaker. Okay. B-E-C-H.
8: Big Neeraj.
6: Beach. Absolutely correct. Neeraj, aapne baazi maar li. Beach is the correct answer. Ashi, it was a photo finish. How much does it mean to you? How badly do you need this staycation? Tell me.
8: Yeah, my daughter is coming for a vacation. She's studying in Europe. So it'll be great if we go together with her.
6: Wonderful, yeah. That reason enough. I think ek aur brownie point aapko mil gaya uske andar. But congratulations, aapka naam draw ke andar chala gaya hai.
8: Thanks.
6: Plus, on the spot, Neeraj, we won't allow you to go back empty-handed. Aapne jeet liya hai 2 Vox tickets and an F&B voucher as well. Congratulations.
8: Thank you so much. Thank you.
2: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: 36 degrees outside, low jayega around 32. Pretty humid though. Humidity filhal 62% par.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
12: Are you going to go?
13: Yeah.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, मंडे की शाम है, मन नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं बार बार खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ इस ऑफिस में, तो जवाब यहाँ पे है, अपना बिजनेस खोलने का वक्त आ गया है। यू नो यूनिवर्स पुट्स यू इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन सो दैट आप अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाएं। इफ बिजनेस इज योर मंजिल, दिस इज इट। गेट इन टच विद अजमान फ्री जोन अथॉरिटी, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस। ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 दिरहम्स। To get your business license, all you need is a business idea. That's it. Baki, take care of everything, including your visa, your bank requirements. Bahut hi quick, completely digitized hai pura process. TNCs do apply. To get your one-click license, any further information, visit afz.ae. Filhal, we'll visit the year 2000. And Himesh Reshamya has not made an album which had bangers after bangers. Let me see if you remember this movie. Salman Khan, Karishma Kapoor, Himesh ka music, right here on The Big Thrill.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
2: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Haircut that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: हाँ जी, बिग ट्रैफिक मिलने वाला आपको इस वक्त अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी ऑल द वे अंटिल डिस्ट्रिक्ट वन. आपको बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा इफ यू टेकिंग हेस्टर स्ट्रीट. दिस ट्रैफिक व्हिच इज मूविंग अ बिट स्लो दैन द यूजुअल एट द मोमेंट नियर अलबर्शा वन अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में. फिर तो यूजुअल है, मंडे की शाम में शेख जायद पे है ट्रैफिक ऑलमोस्ट 45 मिनट डिले. वेरी स्लो मूविंग नियर DIFC बिजनेस वे ऑल द वे टू बाय मॉल. इट्स ऑल पैक्ड. शेख मोहम्मद बिन जायद अगेन 45 मिनट डिले. एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट, यू नो 800-1062 पर.
6: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, Big Thrill, Mansi, we're playing the 5-second rule. And Mohan Pyare. Hi Mohan, कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, बस बढ़िया.
1: क्या करते हैं मोहन आप?
2: मैं डिलीवरी करता हूँ.
1: वेरी वेरी नाइस. यू गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.
2: होटल वाले आप क्या करते हैं? मैं होटलों में करता हूँ.
1: अच्छा, तो मतलब आप होटल्स में डिलीवरी करते हैं, होटल वाले रेस्टोरेंट्स वाले हमारे यहाँ डिलीवर कराते हैं. वेरी नाइस. मतलब आप रॉ मटेरियल डिलीवर करते होंगे ना वहाँ?
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: वेरी नाइस. कितने साल हो गए यहाँ पे?
2: मैं 2013 से हूँ.
1: काफी साल हो गए यार.
2: हो गए, बुड्ढा इधर ही हो गए, बाल वाल इधर ही गिर गए.
1: आवाज से तो नहीं लग रहे हो कि बुड्ढे हुए हो, जवानी साउंड कर रहे हो. पता है किसी ने मुझे कहा था, अगर यहाँ पे आपके बाल झड़ने लग जाएं और पेट बाहर आ जाए, मतलब बस आप तरक्की की राह पे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट. फिलहाल मोहन, हम खेलेंगे 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: 3 शाहरुख खान की मूवीज.
2: कल हो ना हो.
1: हाँ.
2: कुछ ना कहो कुछ होता है.
1: कुछ ना कहो. 5 second कब के हो गए मोहन? फटाफट खेलने वाला गेम है. हाँ, चला गया. अभी रुको, फटाफट दौड़ो इसमें. 3 ऐसी चीजें जो दूध से बनती हैं और आप खा सकते हैं.
2: पनीर, दही
1: और
2: गुलाब जामुन.
1: गुलाब जामुन, रसमलाई. ओफो, ध्यान आज आपका कहीं और है. 3 ऐसी चीजें जो मोहन आप बीवी से छुपाते हो. कितना झूठ. ये बाल ऐसे नहीं झड़ रहे हैं, ये बाल ऐसे नहीं झड़ रहे हैं. यहाँ के पानी को बदनाम मत करो. ये जो झूठ बोलते हैं ना बंदे, उस स्ट्रेस में उनके बाल झड़ते हैं. पानी को ऐसे आप लोगों ने बदनाम कर रखा है.
2: क्या बताऊँ, 5 second में वो भी.
1: 3 ऐसी फिल्में जिनमें दिल आता है टाइटल पे.
2: वो भी दिल
1: है. आसान साउंड करता है, बट इतना आसान ये गेम है नहीं, है ना?
2: हाँ जी, उस टाइम पे पता नहीं किधर चला जाता है, माइंड से आउट हो जाता है. मैं पहले बार खेल रहा हूँ और पहले बार आपसे बात कर रहा हूँ फोन में.
1: लोग ये भी कहते हैं मोहन के सुंदर लड़की से बात करते करते लड़के अब अक्सर भूल जाते हैं.
2: बखला गया यही होगा शायद, थोड़ा सा बकला गया अभी. ट्रू मानना पड़ेगा ये चीज.
1: ओह, यू आर सो क्यूट मोहन. इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. बाय. ये या 5 second rule, अगर आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना है 800-1062 पर.

0: हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
2: InsurersMarket.ie. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsurersMarket.ae.
1: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the bold flavor-packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली,
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 32, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 58% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, you have Big Thrill, Mansi, and of course it's time for the big summer surprises wherein you have a chance to win a beautiful, stunning staycation. Matlab, you're chilling by the pool, you're enjoying some great food, enjoying the mahol, beating the heat in style. But ye sab jeetne ke liye pehle participate karna padega. Participate karne ke liye, you need to register right now. BSS, that is Big Summer Surprises. Your full name, 054-309-1062. Ye hamara WhatsApp number hai. Is pe fatafat bhejna hai.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Rasal Kaima.
2: दो लोगों के बीच जो हमारा रैंडमाइजर चूज करेगा, यहाँ होगा तगड़ा मुकाबला. इट्स द वेकेशन वर्ड गेम. हूएवर क्रैक्स इट, ए, आपका नाम जाएगा इन द ड्रॉ जहाँ आप स्टेकेशन जीत सकते हैं, एंड बी, यू विल वॉक अवे विद ओपन मूवी टिकट्स करेंसी वॉक सिनेमास एंड एफ एंड बी वाउचर्स. यू कांट मेक योर मंडे बेटर देन दिस. सो फटाफट सेंड इन योर एंट्रीज. रजिस्टर BSS, योर फुल नेम 0543091062 पर व्हाट्सएप करना है.

0: rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill and it's time for the big summer surprises. And you have a chance to beat the heat in style. Chance for you to win a staycation and other fantastic prizes. Bahut simple hai, aapne sirf register karna hai 0543091062. Hamara WhatsApp number hai. All you need to do is just send us a message. BSS. अपना पूरा नाम व्हाट्सएप पे ऑन 0543091062 राइट नाउ. अंकिता एंड राहुल, हाय, गुड इवनिंग.
2: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू? अंकिता यार, डीपी तो बड़ी अच्छी, कौन सी कंट्री की है?
2: ब्राजील, रियो.
1: वाओ, ब्राजील, रियो, पैसे वाली पार्टी. आपको स्टेकेशन की क्या जरूरत है, राहुल को जाने दीजिए.
2: लेट्स सी हु विल.
1: राहुल की डीपी नहीं है, पता नहीं किससे छुपा रहे हैं ये.
3: रियली?
1: हमें तो नहीं दिख रही सर, हमसे छुपा ली होगी आपने, हो सकता है.
3: ओके, माइट बी, मैंने सेव नहीं किया हुआ है नंबर.
1: कर लो यार सेव, बुरे नहीं है, प्राइजेस ही देते हैं आपको फिलहाल.
3: थैंक्स.
1: आर यू गाइस रेडी फॉर द बिग समर सरप्राइजेस?
2: ओके,
1: तो जो भी आज शाम जीतेगा, ये गेम है द वेकेशन वर्ड गेम. ए, आपका नाम ड्रॉ में जाएगा फॉर द स्टेकेशन. एंड बी, राइट नाउ आप जीतेंगे 2 मूवी टिकट्स. दीज आर ओपन मूवी टिकट्स कर्टेसी वॉक सिनेमा एंड F&B वाउचर. वेरी वेरी सिंपल, जवाब देने के लिए आपको बोलना है जोर से बिग और अपना नाम, जैसे बिग अंकिता, बिग राहुल. सो इट्स वेरी सिंपल, आई गिव यू फ्यू वर्ड्स जिसमें मिसिंग लेटर्स होंगे. दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू अ वेकेशन, रिलेटेड टू समर. आपने वर्ड गेस करना है.
2: Okay.
1: किसकी स्पेलिंग ज्यादा अच्छी थी स्कूल में, पढ़ाई में कौन अच्छा था?
2: We will see soon.
3: Not sure.
1: नहीं, अंकिता ही लग रही है मुझे, क्योंकि आपकी तो डीपी तक नहीं है. But anyways, all the very best. Let's play this fantastic game for the big summer surprises.
0: Participate in the vacation word game contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, आपका पहला word है S-N- dash.
2: Big Ankita. F-A-N-S. Fans. F-A-N-S.
1: S-A-N-S. इसका मतलब क्या होता है? Sans.
2: Pankha.
1: एस, मैंने फैन बोला है. हाँ राहुल,
3: S-A-N-D.
1: चलो सही जवाब, 1.2 राहुल. ये फैन कह रही है, ये तो और आगे है. मैंने एस डैश एन डैश कहा, ये कह रही है फैंस. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वर्ड इज SUGL-SS-S.
3: राहुल,
1: बिल्कुल सही जवाब. ये देखो, उम्मीद नहीं थी, फिर भी इन्होंने जो है सही जवाब दे दिए. अब ऐसे तीसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर फन पूछ लेते हैं. ठीक है, ठीक है अंकिता? थर्ड वर्ड इज SH-L-.
2: आई क्विट.
1: राहुल कह रहा मैं जीत गया, मैं मेहनत नहीं करूंगा. शेल यार, कोई बात नहीं, देखो काम आया. जब दो खिलाड़ी जो हैं, जो दोनों ही थोड़े कच्चे हैं, उसमें से एक थोड़ा बेटर जो है वो जीत जाता है, वही हुआ.
2: कंग्रेचुलेशंस
1: राहुल, यू आर वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर. प्लस आपका नाम जा रहा है इन द ड्रॉ जिसमें आप जीत सकते हैं अ स्टेकेशन एट दिस स्टनिंग स्टनिंग प्रॉपर्टी व्हिच इज रिक्सॉस अलमेरीद. गए आप यहाँ पहले?
3: No.
1: So all the very best.
3: Thank you so much, Mansi.
1: Ankita, better luck next time. You can still participate tomorrow, okay?
3: Ankita.
2: Chalo. Thank you.
1: ये तो देखो ऐसे ऐसे, sorry Ankita, जैसे बहुत मेहनत करी है. तुक्के में जीते हैं. Chalo, have a great evening, guys. Bye.
2: Thank you. Bye.
3: Thank you. Yeah, bye.
0: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Welcome to the last of the show. And jitna confused mujhe mera chat GPT, वैसे मेरा Android है तो Gemini करता है, उतना तो मुझे मेरे किसी ex ने भी नहीं किया. अब मेरे ना right hand में हो रही खुजली, तो मुझे लगा पैसा आएगा, जरा इससे पूछती हूँ. ये भाई साहब तो जो है कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये गलत थ्योरी है तो कहता ओके माय बैड, आई थिंक यू आर राइट, बट इन सर्टेन रीजन्स इट इज कंसिडर्ड दिस, इट इज कंसिडर्ड दैट. अब मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया की मानूंगी, बट मिल नहीं पा रहा है चैट जीपीटी. आप बताओ कि राइट हैंड पे खुजली होने से पैसा आता है कि जाता है? आना ही चाहिए, अभी जाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास. फिलहाल एक ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हो टू टोटली अनवाइंड. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, बट फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: 35 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 32. ह्यूमिडिटी फिलहाल 58% पर.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: देखो 2026 के पहले 6 महीने कैसे गए हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू राइट. मतलब आप और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आने वाली आवारा अपन 2 दिस ईयर इन ऑगस्ट. एंड व्हेन नथिंग वर्क्स द राइट वे इन योर लाइफ, इमरान हाशमी मेक्स अ कमबैक एंड मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल. आई एम अ बिग इमरान हाशमी फैन एंड आई कांट वेट फॉर आवारा अपन 2. सो या दैट्स समथिंग दैट आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड इस साल में. एंड ऑगस्ट एंड में आई थिंक मूवी रिलीज होगी. फिलहाल यहाँ पे कमिंग अप सम मोर म्यूजिक. एंड व्हाइल वी आर एंजॉयिंग म्यूजिक, मैंने कहा ना इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, टू बी योर ओन बॉस. इनफैक्ट कल मैं अपने एक फ्रेंड के साथ थी जिसका खुद का बिजनेस है, उसने मुझे एक घंटे में कन्विंस कर दिया है कि 9 to 5 में फ्यूचर नहीं है, अपने बिजनेस में फ्यूचर है. अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं देन गेट इन टच विद अजमान फ्री जोन अथॉरिटी. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर एसएमई स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 दिरहम्स. टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया. Baki, they'll take care of the rest. That is your visa, your bank requirements, a very quick, completely digitized process. TNCs do apply. For more information, to get your one-click license, aaj hi visit kijiye afz.ae.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know, for the first time, I like a remake because ye अलग नहीं किया है गाना, द फील इज द सेम. इन फैक्ट दिस इज काइंड ऑफ ट्रिब्यूट फ्रॉम द टीम ऑफ कॉकटेल 2 टू ओजी कॉकटेल टीम. ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन एंड इट्स अ मूवी टू वॉच विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू हैवंट सीन द मूवी, गो वॉच इट. यू विल लव द म्यूजिक, यू विल फॉल इन लव विद इटली एंड ऑफ कोर्स द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स बिटवीन फ्रेंड्स एंड लवर्स. सो अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं. फिलहाल यहां से मेरा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है. मैं आपसे मिलूंगी अब कल. अंटिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 6.2 Big FM. वहां भी आपके पास मौका है टू विन ओपन मूवी टिकट. सो गो एंड से हेलो टू अस देयर. यू कैन से हाय टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो. मैं आपसे मिलती हूँ कल. अप नेक्स्ट सम वेरी अनप्लग्ड, वेरी लॉन्ग ड्राइव काइंड ऑफ म्यूजिक विद द बिग चिल. डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. कल सुबह विद सिड ऑल्सो यू स्टैंड अ चांस टू विन योरसेल्फ सम अमेजिंग प्राइजेस एंड अ स्टेकेशन. रजिस्टर करते रहिए. व्हाट्सएप ही करना है BSS अपना पूरा नाम टू 0543091062. Have a great evening and a good night ahead. I'll see you tomorrow.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: insurancemarket.ae
0: Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सही हैं। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।